0: City FM 89.
1: It's 7:30 a.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City
5: FM 89.
6: अब आपको मिले 8 घंटे तक मच्छरों यानी मलेरिया और डेंगू से प्रोटेक्शन घर के अंदर और बाहर भी मॉस्पेल अब सील के साथ क्वालिटी देर तक बरकरार

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: अब आपको मिले 8 घंटे तक मच्छरों यानी मलेरिया और डेंगू से प्रोटेक्शन घर के अंदर और बाहर भी. मॉसपेल अब सील के साथ क्वालिटी देर तक बरकरार.
2: City FM 89
1: on the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM
1: 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
4: You got me going crazy.
5: अब आपको मिले 8 घंटे तक मच्छरों यानी मलेरिया और डेंगू से प्रोटेक्शन घर के अंदर और बाहर भी. मॉसपेल अब सील के साथ क्वालिटी देर तक बरकरार.
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
7: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है. मैं चाहूँगा कि आप अपने तमाम टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें. शौकत खानम लैब से टेस्ट शौकत खानम कराची की तकमील.
8: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: Why can't you sleep?
1: Perfect antidote to your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
4: अब आपको मिले 8 घंटे तक मच्छरों यानी मलेरिया और डेंगू से प्रोटेक्शन घर के अंदर और बाहर भी मॉस्पेल अब सील के साथ क्वालिटी देर तक बरकरार

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: City FM 89, we're playing your song.
2: You're listening to